कि मैं बड़ा ऊंचा, मैं तो हमेशा यह भी कहना कि मैं बहुत नीवा हूं। मेरा बहन उठना भी नीवियां दे नाल पर एक गल

एक है हरी हरी, ये ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी, ओ परमात्मा अपने भगत नूं गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखन दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

साहिब फरमान करते हैं कि सारा कुछ परमेश्वर की कृपा नाल गुरु तो ही प्राप्त हुंदा है।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवा, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

परम सत्कार योग सत संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करोगी धंध्या संकोच के शरदा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी का कीर्तन गुर इतिहास सरवण किया। जिन्ना समा होर महाराज बख्शते ने अज इस पंडाल का पंजवां समाप्ति का दीवान है। सारिया संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जिहड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रखे जिथे जिथे जगह मिलदी है सतगुरां नूं हाजर नाजर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी कृपा होवे उदों सतगुरु पातशाह जी कृपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नूं मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल हुंदी है एक लोड़ हुंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकदा पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारियो मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हो। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारियो सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया। खुश झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी क्रिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी। ये मजबूरी है मनुख दी समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे ओ कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उनू बोलने दी लोड़े नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नू देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उनू बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिनू दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उनू कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलने दी लोड़ पई
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ, ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਗ ਵਰਤੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।

मान को सत्संगी सज्जन पवित्र आत्मा गुरमुख सज्जन जितने भी माई पाई साहेब गुरु ग्रंथ साहब पातशाही के पवित्र कदमा अंदर अमृत वेले दिया हाजरियां भर रहे हो सोने दरबार प्यारे दरबार सतगुरु जी के पवित्र चरणों का आनंद ले रहे हो बहुत बख्शिश होवे बहुत गुरु कृपा करे ता अपनी सिर्फ सलाघा बख्शदा है सिर्फ सलाघा उन्होंने बख्शदा है जिन्हों ते गुरु का कर्म होवे जिन्हों ते गुरु की बख्शिश मेर अति रहमत होवे उन्होंने सत्संग दियां कड़ियां नसीब होंदियां हन कैसा आनंद है शब्द विच कैसा रस है शब्द विच पंक्तियां जो पढ़ रहे सां जपो ता एको नामा एक नाम नाली जोड़िया है एको नाम नाली सानू जोड़िया है होर किसे नाल नहीं जोड़िया एको जप एको साला एक सिमर एको मनया एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवान दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थल रहा पर सिमरना ही बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन है कुल दुनिया के धंधे सौखे है एक प्रभु का सिमरन सब तो औखा जी बड़ा कठिन जे कोई समय ली एकाग्रता बख्श नहीं जितने मेरे सज्जन बैठे हो मिंट गिणवे रह गए 94 मिंट रह गए वो मिनटा असा सफल करना है सब तो पहला मन चित बिरतिया टिकाव लिया एक बार प्यार ना आखो सदना आखिया जी आख लिया जी हूं कि बिखड़ा है कि मुश्किल है नहीं आखिया जाता सारे को आख्या ही नहीं गया सारे आपो अपने ध्यान में ये कठिन जी कुल दुनिया के धंधे सौखे ने एक वाहगुरु आखना मुश्किल है एक वाहगुरु आखना कठिन है ये मैं नहीं कह रहा ये गुरु बाबा कह रहे हैं रोज नहीं पढ़ते आखण औखा साचा ना बड़ा औखा है ये नहीं आख्या जाता आखो ना साधना देखिया जी नहीं एवं तो नहीं बाबा जी बाणी च कहते आप बचन सुनियो बुरे काम को ऊट खलोया बैड़ा कर्म करना हो ना अधी राति दौड़ पैदा नींदर की परवाह नहीं सुस्ती की परवाह नहीं बरादरी की परवाह नहीं मां प्यो की परवाह नहीं रिश्तेदारां दी परवाह नहीं करना बाबा जी कहंदे बुरे काम को ऊठ खलोया ते अगली पंक्ति पढ़ी जे कदी नाम की वेला पह पह सोया वाहिगुरु आखण वेले नूं नींदर आ जांदी वाहिगुरु आखण वेले नूं उंगलाण आ जांदी इहनूं सुस्ती पै जांदी इहदे कोलों नहीं आख्या जांदा इह कठिन सौदा जे इह बिखड़ा सौदा जे नाले सुस्त आदमी ते आख नहीं सकदा सानूं ते कलयुग पिया होया सानूं ते कलयुग ने दबाया होया कुचलिया होया पैरां थले लताड़िया होया कलयुगी बंदा ते वाहिगुरु नहीं कह सकदा ए ओही कह सकदा जिते ते गुरु नानक दी कृपा होएगी एक वारी आखो तुलसी जी दा बचन पढ़िया जी बाबा जी ने कमाल कर दिती है तुलसी जी दा बचन मैं कह रहा तुहानू आखण औखा साचा ना क्यों औखा है तुलसी जी ने शलोक उचारे जदों मैं पढ़ना जदों मैं संतान सुनाना मैनू भी आनंद आता है मैनू भी स्वाद आता है की कहते तुलसी नाम जो राम को जिन्होंने रामायण लिखी है जिन्होंने राम का जीवन पेश किया बयान किया खोलिया खुलासा किया कहते तुलसी नाम जो राम को राम का नाम भगवान का नाम ईश्वर का नाम खुदा का नाम अल्लाह का नाम गाड़ का नाम परमेश्वर का नाम मेरे वाहगुरु का नाम नाम सारे ही उदेश असा त्रेड़ा पाई असा विथा पाई असा दुआरा खड़िया कीतिया हुई नाम सारे उदेश नाम च कोई फर्क नहीं साढ़े जपन च फर्क है बड़ी प्यार की गल कह रहा तुलसी नाम जो राम को रीज लेओ चाहे खीज भावे रीत किल लै तो भावे खीज किल लै रीत का मतलब की होया प्यार नाल आखना श्रद्धा नाल भावना नाल सत्कार नाल भाव नाल भक्ति नाल ते खीज का की मतलब होया थोड़ी जी कागर का खीज का मतलब पंजाबी का लफज
फड़ के आखना, कुड़ के आखना, गुस्से नाल आखना, यो मानो के मजबूरी नाल आखना। एक काम भी होंगे ना बच्चा जेड़ा मजबूरी नाल करता है, बापू कहता है कि अमृत वेले उठना है, पर बच्चा मजबूरन उठता है, चित नहीं करता, पर बापू का हुक्म तो है, मां का हुक्म तो है, एक मजबूरी नाल भी करना पैदा है। तुलसी जी ने कमाल कर दी, कहते ए इंसान ए बंदे अज गया तू, भावे खुशी नाल कह लै ते भावे औखा होके कह लै, वाहगुरु ने तेन फल देना है। वो कहते तुलसी नाम जो राम को रीज लेओ चाहे खीज, ते किसी ने आख्या है तुलसी जी एक ऐसा श्लोक उचारिया जे जे खुशी नाल याद करिए फल देंदा है, झोलियां भरदा है, बरकतां देंदा है, इच्छा पूरियां करदा है, ते जे प्रभु नु गुस्से नाल याद करिए, जे प्रभु नु औखा होके याद करिए, वह भी कुछ देंदा है, ता भी कुछ देंदा है। तुलसी जी कह देंदा है तुलसी नाम जो राम को रीज लियो चाहे खीज, कहने धरती पर ऐसो उगत है उल्टो सीधो बीज, भावे बीज सीधा पै जाए भावे पुठा पै जाए, जो किसान छट्टा मारते ना धरती विच कोई सीधे पै जाते कोई पुठे पै जाते, सारे बीज उग पैंदे ने सीधे ते पुठे सारे। कहंदे ने बीज ही ए प्रभु का नाम जेड़ा है ना ये बीज है गाई, भावे तू खुशी नाल कह लै ते भावे मजबूरी नाल कह लै ते भावे मेरे खोए आख लै, एदा फल तेन अवश्य मिलेगा। एक बार बोलो एवं नहीं पातशाह कहते जपो ता एको नामा, पढ़ो ना आखो ना जपो ता।

जेड़ दा महीना तत्ता तुप तत्ती रेत तत्ती मुगल सरकार तत्ती पर ठंडे कौन हन शांति दे पुंज निमरता दे सागर गंभीरता दे सोमे गुरबाणी दे बोहित गुरमत दे स्कॉलर पंजवे गुरु नानक शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। किसे कवि ने ठीक ही किया है, इना अखा ने कई पतंगिया नू उंज ता लाटा ते सड़दियां देखिया है, मैं कई वेर चुप किते गुंचिया नू देगा विच भी कर दिया देखिया है, तत्ती रेत ते कई नमाजिया नू मैं कलमा यारदा पढ़दियां देखिया है, पर मैं की दसा अर्जन देव ताई किदा अग उते सड़दियां देखिया है। हजरत मियां मीर ईरान दे रहण वाला जो उस वक्त लाहौर विच ही रह रहा सी, जदों उस नू किसे ने जाके दसिया ओए फकरा जाके अपने यार दी हालत ना देख, ता इस सुन के साईं मियां मीर दौड़िया आया, आके की देखदा है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे हुए हन, सारा शरीर छले छले होया पया है, पर मस्तक दलका मारिया है ते मुखों की कह रहे हन, तेरा किया मीठा लागे। ए सब कुछ देख के साईं मियां मीर ने गुरु साहिब नू सवाल कीता। मियां मीर ने पुछया सतगुरां नू, तवी तपदी वांग तंदूर दाता और तन भर दिता सारा शालिया ने जिवे वेल ते गुच्छे अंगूर दाता, कोमल कलियां तो कूड़ा रेशमा तो जिसम ढलके होया मनूर दाता, और कल तख्त उत्ते ते अज तवी उत्ते एक ही खेल रचाया रब्बी नूर दाता, ते नाल ही हाथ जोड़ के बेनती कीती, महाराज मेरे कोलों ए तसीहे जरे नहीं जांदे, मेनू हुक्म दियो मैं अज ही लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का देंगा। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी धीरता नाल पुछया, साईं जी ए शक्तियां कित्थों प्राप्त कीतियां? तां जवाब मिलिया, जी हजूर कोलों। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, इन्हां शक्तियां नूं असीं वी तां वरत सकदे सी, पर शक्ति वरतना परमात्मा दे विरुद्ध बगावत करना है। साडे दो निशाने सन, असीं इस सृष्टि उपर दो नीहां रखनियां सन। अगों हस के सतगुरु कहन लगे, तू फकरा रमज पछाणी नहीं, मैं तेरे दिल दी जान लई, तू मेरे दिल दी जानी नहीं, मैं रखनिया है सन दो नीहां, एक शहीदी दी एक हरमंदर दी, ओ तू रखती ए मैं रखूं, ए चाह है मेरे अंदर दी।

जुमला वह तुम बोले है स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन वस्त एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम नसरत कर सिवत तुम्हारी हम नसरत कर सिवत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी जस करो वाहिगुरु दा प्यारे चितनु एकाग्र।

कीर्तन हुए अंधार, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना, आप तरह सगल

0: सतगुरु युग युग अटल चवर तख्त मालक दसम पातशाह दी जग दी जोत शब्द अवतार संसार दे सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र गोद विच दूरों नेड़े चल के जिन्हें भी माई पाई सतसंगत हरी जस कीर्तन का लाभ उठाउन दे लई गुरु दरबार विच कोबड भागे हो आओ अपने मन नु एकाग्र करन दी कोशिश करो अपनी सुरती नु अखां नु बाहर जाण तो रोको इधर उधर वेखण दी कोशिश ना करो गुरु स्वरूप दा ध्यान करो क्योंकि हरी जस कीर्तन सत्संग दा पूरा लाभ ताही प्राप्त हो सकता है जे साडे तन दे नाल मन भी इत्थे हाजिर होवे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: क्योंकि ए सब सुनाउणा मन नूं है तन नूं नहीं है तन तां इक जरिया है सो गुरु जी कहिंदे ने प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत जदों मन एकाग्र हो जाएगा गुरु शब्द दे नाल जुड़ेगा हरी जस कीर्तन च जुड़ेगा भुख दुख गर्मी सर्दी सब लगन तो हट जांदियां हन क्योंकि सेवक उही हुंदा है सतसंगी उही हुंदा है जिहड़ा भुख प्यास ते कंट्रोल करे गर्मी सर्दी सहार सकदा होवे दुख सुख की परवाह ना करे मान अपमान तो उपर उठे अते अपने मन नू अपने काबू विच रखे कंट्रोल करे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो ये साडे चंगे भागां दी निशानी है कलयुग दा बड़ा भयानक समा है ऐसे समय दे गुरु दी शरण मिल जानी सतसंगत मिल जानी अच्छा करके निश्चय करके ये साडे चंगे भागां दी निशानी है सो कदम सफल कीते ने गुरु वल चल के नेत्र सफल कीते ने दर्शन करके सीस सफल कीता नमस्कार करके मत्था टेक के अपनी जबान भी सफल करया करो गज बज के तिना हिस्सों के बिच बोल के

जिज्ञासु कौन है, सत्संगी कौन है, जड़ा सवाल करता है जाके, हे गुरु हे महापुरशो मैनू दसो, मैं चौरासी विच फसया होया हाँ, मैं हनेरे विच फसया होया हाँ, मेरी जिंद दुखां विच फसी हुई है, मैनू दसो कोई रास्ता, ये सवाल करता है।

0: सकल श्रेष्ठ को
1: राजा दुखिया
0: सुखी के में होएगा पाए। हर का नाम जपत होए
1: सुखिया,
0: परमेश्वर का नाम जप के ही सुखी हो सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सत संगत, हुण फिर असीं सोचदे हां भी नाम जपना कि सानूं नाम जपन नाल ही सुख मिल सकता है। बड़ा औखा है नाम जपना, दुनिया छड़नी पवेगी, संसार का त्याग करना पवेगा। हां संसार का त्याग करना पवेगा, मोह ही दुखां का कारण है। सारे दुखां का कारण मोह है, सारे दुखां का कारण अज्ञान है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: फिर तो भाई बड़ा औखा हो जाएगा, दुनिया छड़ दी, सारी दुनिया किवें छड़ जावांगे, किवें सारी दुनिया जंगल नूं तुर जाएगी। फिर तो असीं जावांगे नहीं गुरुद्वारे, ऐसे साधुओं किथे जावांगे। नहीं, गुरु नानक जी ने सत संत कृपा की थी, दुनिया नहीं छड़ाई परंतु दुनिया का मोह छड़ाता। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: बोलो धन गुरु नानक,
1: धन गुरु नानक।
0: दुनिया तो नहीं छड़ाई, योगियों ने दुनिया छड़ाती, बड़े बड़े राजे पर्थरी वर्गे साध संगत उन्हां दे कन्ना पाड़ के मुंदरां पवा दित्तियां, परंतु मन फिर भी शांत ना होए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: योग दे नाल भी योग सिद्ध आसन 84 ए पी कर रहा, बड़ी आरजा फिर जन्म हर सिंह संग ना
1: गहया।
0: तीर्थां ते बैठ के वेदां दे पाठ कीते, शास्त्रां दे पाठ कीते, बड़ी तरह दी पूजावां कीतियां, फिर भी मन शांत ना। पाठ परिवार वेद विचारियो, निमर प्रियंगम साधे, पंच जना सिंह संग ना छोड़ के, अदक अहां बुद्ध बाधे, प्यारे इन विद मिल ना जाई। मैं किए कर्म
1: अनेका,
0: अनेकों ही कर्म कीते, मैं किए कर्म अनेका, हार परे स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध
1: विवेका।
0: बड़े जतन कीते, बड़े तरीके अपनाए, परंतु फिर भी मन शांत ना होया। बोलो
1: सतनाम।
0: पर्थरी योगी श्री नारद जी की उपासना करते हैं, नारद जी की आराधना करते हैं, नारद जी के सुपने विच दर्शन हुए। हां भाई क्या चाहते हो? शांति, मुक्ति, परमेश्वर का मिलाप। 500 साल की मेरी उम्र हो गई है, कितने योग कमाले हैं मैं, रिधियां सिधियां भी प्राप्त हो गई, अजे भी कहते हैं हे नारद

0: हे नाथ, मैनू कोई ऐसा तरीका दसो। नारद जी ने पता है की कहा? नारद जी ने कहना कीता, हे पार्थर, इसका इलाज मेरे को नहीं है। मैं तेनों एक तरीका दस दिंदा हां, रास्ता दस दिंदा हां। संसार ते गुरु नानक प्रगट हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे पार्थरी, इधर उधर चोटा खाण की लोड़ नहीं है। दुनिया का मालक दुनिया ते आ गया है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उथे तेन शांति मिलू, तेन सब कुछ मिलू, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे नारद जी, फिर मैनु कोई रास्ता दस दो, कोई ढंग दस दो, उन्हों का कोई चक्कर चिहन दस दो, स्वरूप दस दो, किथे पैदा हुए ने वह। श्री दशमेश मांगू, मैनु दसो, मैं उन्हों का दर्शन किमें करांगा, मैं उन्होंने किमें मिलांगा, मैं किमें उन्हों की शरण में जावा। कहना कीता, हे पार्थरी, तू इस तरह नहीं मिल सकता। तू उन्होंने आराध याद कर, बेनतियां कर, अरदासा कर, तेन आपे ही मिल जाएंगे। आके बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जड़ा उत्तम जग्यासु हुंदा है, उसनु गुरु खुद ही ढूंढ लैंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जड़ा अधिकारी नहीं हुंदा, उनु दर ते आए नु भी कई बार मोड़ दिंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अण अधिकारी नु तू याद कर, बेनतियां कर। सो वक्त आया, समा आया, ओही पार्थर। होर बहुत सारे योगी गुरु नानक नाल चर्चा को चर्चा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, परंतु पार्थरी सवाल जवाब नहीं करता है, बोलो
1: श्री वाहिगुरु।
0: दुनिया की आदत है, सलाम जवाब दो भैं करे, मुंडो कोथा जाए, ना ही मत्था टेकदा, ना ही शंके करदा, ना ही सवाल जवाब करता है, दोवें ही काम करता है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ना ही सेवक, ना ही शंका। सो सत संगत पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, कुछ नहीं पुछया। बाकी योगी परीक्षा लेंदे ने अपने होमें दे विच आके, कई तरह दियां रिधियां सिधियां बखाउंदे ने गुरु नानक नूं, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां नूं प्रभावित करन दी कोशिश करदे ने, गुरु नानक साडे योग दे विच आ जाए, किन्ना योग फैल जाएगा, साडा मत फैल जाएगा। पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, क्यों? क्योंकि पार्थरी नूं इशारा हो चुका सी, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: पहला योगी सी पार्थरी जिहड़ा गुरु नानक दी शरण विच पिया, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: गुरु अंगद देव महाराज भाई लैणे दे रूप दे विच देवी दे चाले जांदे हन, संग लैके जांदे हन। चोजी प्रीतम, रस्ते विच की सुनिया गुरु नानक दी महिमा? क्योंकि ये दर ऐसा है भाई,

वंश मेरा खानदान वधे और दुनिया दे विच ए देखदे आं कि जिदे घर धी पुत्र ना होवे रिश्तेदार भी उन्हां नूं ताने ते मेणे मारदे ने।

अगर तुसी अपने पिता दा कहना मन्या हुंदा गुरु रामदास जी दा ते तुसी गुरु बनदे और ये सारा कुछ तुहानू मिलना सी तुसी पिता दी आज्ञा नहीं मन्नी सेवा सिमरन नहीं कीता ते ए गुरगद्दी तुहानू नहीं मिली पर तुहाडा छोटा भरा गुरु अर्जन साहब जिन्हां ने सेवा सिमरन कीता

बड़ी धूड़ उड़ रही है, कौन आ रहा है? ता सेवका ने कहा, बाबा जी गुरु के महल आ रहे ने पाव, गुरु अर्जुन साहब दे धर्म सुपत्नी आ रहे। ता बाबा बुढ़ा जी ने सहस बाबचन कीता, गुरु क्या नू किधरू भाजड़ा पै गई। माता गंगा जी आए, लंगर छकाया, पर बाबा जी ने पुत्र

माता गंगा जी उदास होके वापस चले गए और गुरु अर्जुन साहब ने कहा, महाराज बाबा बुढ़ा जी ने पुत्र वास्ते अरदास नहीं की थी, सगा कहा कि गुरुआ नू किधरू भाजना पै गई गुरु के महल नू।

आज आप अपनी जगह तोट के अगा हुए और पज के माता गंगा जी दे सिर तो प्रशादे अते लस्सी दी चाटी पकड़ ली और नाल कहन लगे मां अज बड़ी देर कर दी थी, आई ते भुख भी बड़ी लगी। कैसा रिश्ता है जिदे कुल पुत्र मंगन गए ने, ओ अगू माता गंगा जी नू मां कह के बुला रहे ने और बाबा जी चाटी लस्सी दी पकड़ के दरख दी छावे बैठे। जो जिमीदारां दा सुभा है लस्सी नाल ही हथ धोते प्रशादा छकन लग पए, प्याज ते मुक्का मारे आ, प्याज भन्ने आ ते प्रशादा छकदिया ए वर दिता, मां तुमरे ग्रह प्रगटे का योदा, तेरे घर पुत्र होवेगा, बड़ा बली योदा होवेगा।

干净。不记得给单的就拉给没人干，得满的就拉给没人干。ये सवाली ऐसा है, ये बोली ऐसी है, आम बंदा इस गलता जवाब किवें देवेगा।

जेड़े लोग आके मत्था भी टेकते ने सिर ते चुका देंदे पर मन अपने कोल रखते मन नहीं चुकाते चढ़ती जा रही इसलिए सेवा करके एकार सेवा करके तन का चोला पहले

अज समा मिले साध संगत की सेवा कर ली। हसूर कहने नी गंगा असी भी अज अपने तन का चोला।

जिस तुम आप कराए। ते हुन तुसी दावा करके कह सकते हो, जदो करानो जाओगे ए दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं वेख्या, असी बैकुंठ क्यों हो।

माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ओही पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़िया होया है ते जोड़िया विच आके खलो गए। हजूर कहंदे गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब दा दर्शन करो ते तुहाडे जोड़िया दी राखी मैं करांगा। प्रेरणा ले ली इस गल तो जे किसी गुरसिख का जोड़ा सानू चुकना भी पवे ते मन विच नफरत आ जाती। हजूर जोड़िया विच खड़े हैं रुमाल लेके एक एक जोड़े नू साफ करी जाते। संगतां अंदर गईयां बेबल हो गईयां। जिस गुरु नू लपण वास्ते जिस गुरु दे अगे मत्था टेकना वो ते सिंघासन ते विराजमान ने। बाबा बुढ़ा जी तो पुछिया ते बाबा बुढ़ा जी ने चारे पासे तके नजर पई नेत्रां चो जल आ गया। आख्या ओ गुरसिखो जिस ते चरण परसन वास्ते आयो ओ ते तुहाडे जोड़ियां च खड़ा है। ते आके बाबा बुढ़ा जी ने पुछिया पातशाह जोड़ियां विच की कर रहे हो। संगतां दर्शन करन वास्ते आई जोड़ियां च की लभ रहे हो। एक एक जोड़े नू पातशाह वेख रहे कहने बाबा बुढ़ा जी थोड़ी देर होर ठहर जाओ मैं एक एक जोड़े नू चुक के तां वेख रहे हां मैनू किते गुरु नानक दा जोड़ा लभ जाए। मैं सुनिया कि जदों साध संगत कट्ठी होके टुर पवे विच गुरु नानक भी टुर पैंदा है। मैं सुने के साथ संगत आई है ते उथे भी मैं इन्हां दी सेवा करन वास्ते तां के हसी के किते सेवा करदियां करदियां किते गुरु नानक दे चरण भी मेरे हथ आ जा। मैं गुरु नानक दा जोड़ा ढूंढ लवां।

सत्संग तुम्हें कह दे थोड़ी देर होर रुक जा। मैनू इस रस तो ना तोड़न, गुरु नानक दा जोड़ा लभ जाए ते मैं अपने आप ही हरिमंदर साहब पहुंच जावां। इतनी निमत्ता जे इतनी निम्रता सी ते तवियां ते बह के भी क्रोध नहीं आया, जे इतनी निम्रता सी ताइयों ते पट्टा ने कह दिता कि धरण गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रहो भर, भन मथुरा कछ भेद नहीं बुर अर्जन।

अष्टम क्या है, अठवें गुरु बलवीरा बल वाले। जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा। भाई गुरुदास जी कह रहे हैं, हर कृष्ण पायो, गुरु हर कृष्ण साहब अठवें गुरु बड़े बल वाले सन। जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा, जिन्हां ने दिल्ली पहुंच के अपना शरीर त्यागया। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए, बाल रूप विच जिन्हां ने कई तरह दे कौतक करके अते दुखियां दे दुख दूर करके दुखियां नु सुख दिता। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए, तब सहजे तन को छोड़ सिधाए। ए गुरु दा कौतक है कि जिन्ना ने छोटी उम्र विच ही दुखियां दे दुख दूर करके अपना शरीर त्यागया। आओ गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दे जीवन बारे

बाबा राम राय ने देहरादून आके अपना डेरा लाया ते दून तो इस जगह का नाम देहरादून पै गया। हुण बाबा राम राय औरंगजेब दे खुशामदी बन गए ते गुरु घर दे नालों नाता इन्हां दा टुट गया। ते दूसरे पासे गुरु हर राय साहब जी ने अपना अंत समा जान करके हुण गुरु गद्दी अपने

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी है। इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना है, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैं, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच, भावें मैं देग विच, भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां, पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। एक कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला, जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू, मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह बड़े तान नाल, बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके, तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे, सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें ही लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुरु सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता, आपां भी माण करिए ना सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा का पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितारदा

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

0: आखन लगे दिल फरोश अज कुछ कीमत घट की है कुछ मुल घटाया या कल वाला ही है। आखन लगा जी क्योंकि जिन्स भी होई है पदार्थ भी होई है वस्तु भी होई है इसलिए मुल भी रख्या है लेकिन सतगुरु कहन लगे लेकिन का क्या मतलब कुछ ये रू रैत है। आखन लगा हां जी एनी है जेडी ओदी अवस्था है जेडी ओदी हालत है उसने आप आखी कहन लगा
1: महबूबा दे कूचे अंदर मैं दिल वेचन जल था जागा।

उसने कुरान शरीफ की कसम खाधी। पहाड़ी राजिया ने आटे की गऊ बना के कसम खाधी है ये साढ़े ते हमला नहीं करेंगे। पर गुरु साहब ने कहा इन्हां ते भरोसा ना करो, इन्हां कसमां तोड़नियां ने साढ़े ते हमला जरूर करना। इस तरह करदे हैं

एक कागज लो, उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नो प्यारी समझे है।

अपने घरां नूं पहुंचे। घरवालियां ने पुछिया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड के

खून ने फिर उबाला खादा कि मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी कोई जीवना है, सिर झुका के जीवना कोई जीवना है। धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा करदिया मरना असल विच जीवन है। पर हुण ए नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किस पासे, पता लग चुका है आनंदपुर साहब दा किला गुरु साहबां ने छड़ दिता, क्योंकि सिखां ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ दी कसम खादी उन्ना कसमां तोड़ दित्तियां, जिन्ना आटे दी गऊ बना के कसम खादी उन्ना भी कसमां तोड़ दित्तियां। गुरु साहबां दे काफले ते हमला कर दिता, इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान, कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी

गुरु का जस गुरु के दर्शन करन वास्ते फिर आन लग पईयां ओही रौनकां फिर लग गईयां। पुत्रां दे शहीद होण दा कोई गम नहीं, जदों गुरु साहिबां दे धर्म सुपत्नी माता सुंदरी जी ने पुछिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं, महाराज मेरे चारों साहिबजादे कित्थे?

हड्डियां दा मजबूत कमर कस्सा कीता है यह है भाई मान सिंह म्यान विचू कृपान खिची जकारा छड़िया लकीर मारी लकीर कप्पी ते वंगार के किया भाई मैनू अज गुरु दे हुकम दा पता लग गया मैं अज ये फैसला कर लिया है हम तो गुर ही

लकीर टप्पी ते ए गल कही भरावो भैन मर्द है भैन लड़ेगी वीर घरां नूं जाण ताना सुनिया सारियां लकीर टप्पी हुण सलाह कीती ए ढाब सुखी है इथे पानी नहीं इथे मोर्चे बंदी कर ली है दुश्मन दे नाल इथे दो दो हथ कर लीए ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ

रुमाल दे नाल मुंह पूंझिया, चेहरा साफ कीता, पिता शहीद कराया, गम नहीं कीता। अखां सामने पुत्र शहीद हो गए, गम नहीं कीता। परिवार विछड़ गया,

तेरी गोद विच जान निकल जाए, होर मैनू की चाहिए, तेरे चरणा विच जगह मिले, इस तू वड़ा सुख और केड़ा हो सकता है। राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमला रे, अपने चरणा विच जगह दे, होर कुछ नहीं चाहिए। जदों ये गल कही साहबा ने भाई मान सिंह नूं अपने गल दे नाल लाया। भाई मान सिंह ने हुण आखरी वारी धन सतगुरु कहा, मुंह बंद हो गया।

नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मास जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदू मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जीउंदा है, जिन्नू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते उहदे प्यारे पूरे।

एक ओदा मरना जड़ा गुरु तू बेमुख होके मरदा है। इत्थे भी फिटकारा, दरगाह विच भी फिटकारा। एक मरना पाई मां सिंह दा उन्ना दे

नाले वर दिता। इस जगह का नाम हुण मुकुत सर होवेगा। जिहड़ा इत्थे आएगा प्यार शरदा नाल, ओ मुक्ति नूं प्राप्त होवेगा। ओ जो मंगेगा उस नूं प्राप्त होवेगा। अज जदों भी कोई मुकुत सर जांदा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी मत्था टेकदा, ओ इन्हां शहीदां नूं भी मत्था टेकदा जिन्हां ने सेवा बदले।

से महाबली महायोधे सर्वांश दानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां इस दुनिया में आके एक नवा काम किया, जिन्हां नूं दुनिया ने नीच किया छोटे समझिया

कुछ कह रही, वाणी आवाज दे रही, वाणी कुछ बोल रही, जीव सुन वाणी की कहंदी, वाणी तेनू आवाज क्यों मार रही, वाणी तेनू क्यों बुला रही, ते वाणी की आख दी है, सुख माणी सुख अमृत

दीवान विच आ जावी ते इकट्ठे ही सतगुरां दे दर्शन करांगे। चंगा बाबा मैं तेनू सवेरे दीवान विच मिलांगा। ते सतसंगियो सवेर होई है, दीवान सजिया है, तन गुरु अर्जन दे पातशाह तख्त ते बैठे ने, ते बहुत सारिया गुरसिख संगतां नमस्कार करन वास्ते खलोतियां ने। लंबी लाइन लगी हुई है ते बिच बाबा भी नमस्कार करन वास्ते खलोता है। बारी आई जदों इस बजुर्ग बाबे ने सतगुरां दे चरणा ते नमस्कार करके सतगुरां दे चेहरे वल तकिया ते तबक के औ परे जा डिगया। सतगुरु बोले, बाबा की होया जे? बाबे दा शरीर कंबन लग पिया, मुख दे विच्चों बोलिया नहीं जा रहा। सतगुरां ने आखिया, बाबा की होया जे? हाथ जोड़ के आखन लगा, सतगुरु एक गल दसो, कोई इहो जिहा मजदूर भी अमृतसर दे विच रहिंदा है जिहदी शकल तुहाडे नाल मिलदी होवे? सतगुरु आखण लगे, भी मैं ते कोई इहो जिहा देखिया नहीं। नहीं सतगुरु, जरूर कोई इहो जिहा रहिंदा है जिहदी शकल तुहाडे नाल मिलदी है। सच्चण अज सतगुरु अपने आसन तो उठ के आए ते बाबे नू घुट के वावां दे विच लिया। बाबा मैं तेरी गल जान गया हां, तू की कहना चाहुंदा? कल मैं ही तेरा समान अपने सिर ते चुक के लियाया सी। आ जदों सतगुरां ने इनी गल आखी ना, बाबे कोल सुनी ना गई, अखां विचों हंजू किर आए, रो के आखिया, सतगुरु मैं किड्डा गुनाहगार हां, तुहाडियां बख्शां लैण वास्ते आया सी, तुहाडियां रहमतां लैण वास्ते आया सी, तुहानू ही समान चुक के लिया, तुहाडे सिर ते भार चुका के लिया, मैं किड्डा गुनाहगार। जदों बाबे ने इनियां गल्लां आखियां ते सतगुरु आखण लगे, नहीं बाबा इंज क्यों करदा है? जेड़े इस दरबार वल नूं आउंदे ने उन्हां दी मजदूरी मैनूं करनी पैंदी है। अज बाबे दियां झोलियां प्रेमत नाल भर गईयां, बाबा खुशी दे विच फूलिया नहीं समाउंदा, अपने घर नूं वापस आ रहा है, असंगत दे जथे जा रहे ने। रोक रोक के सतगुरां दी उपमा कर रहा है, अमृतसर वल जांदे राइयो जाना गुरुद्वारे दे, भाई तू किथे चला है? अमृतसर चला है। हरि मंदर दे दर्शन करके टुट जांदे दुख सारे दे, सतगुरां दे घर जरूर जाई तेरे सारे दुख ते कलेश कट जाणगे। अज बाबे दी झोली रहमत नाल भरी ते बाबा सारिआं नूं इह दसदा जांदा है।

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले पासिओं शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नूं डराण दी की लोड़ है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित